विनयो जय सत्य संगो दाशार्ह सात्वतां पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अंबो निधिर नंदात्मा महोदधिशयोंतकः अजो महार्ह स्वाभाव्यो जिता मित्र प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रुतशाध्यक्षो महाशृंग

करो वसुरेदा वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः।

आपदः दुर्गान्यतिररत्याशु पुरुष पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्चयो मत्यो वासुदेव परायणः सर्व पाप विशुद्धात्मा यादि ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तव मदीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्म सुख शांति श्रीदि स्मृति कीर्ति न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न